0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मैं अपने घर के आंगन से उसको कितनी ही खुश रंग तितलियां पकड़ दूं, एक रंग की कमी रहेगी वो किसको माँ कहेगी।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मैं अपने घर के आंगन से उसको कितनी ही खुश रंग तितलियां पकड़ दूं, एक रंग की कमी रहेगी वो किसको माँ कहेगी।

जो तफतन इधर से, ये जो तफतन इधर से गुल मोहर की शाख को हटाकर उभरा है उफक पे चांद मेरा, इस चांद का हुस्न तो वही है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: This one's dedicated to my boy B.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: पिंडा विचो पिंड सुनीदा पिंड सुनीदा पिंड सुनीदा

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: तेरे प्यार च उम्र तबाह की थी बेदर्दा आज तू भूल नहीं एथो वद के कैसे रोया है झूठे दावे करण ते तुल नहीं मैनू एक पल विच जिन्हें दर्द मिले तेरे कोल एने दुखड़े कुल नहीं तेरा सारी उम्र दा रो रहना मेरे एक अथरू दा मुल नहीं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा।